प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: श्री गायत्री ओकेशनल जूनियर कॉलेज कोर्सलू नर्सिंग मेडिकल लैब टेक्नीशियन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डीएमएलटी डीएएनएस जीएनएम डीओए बीएससी नर्सिंग कोर्सेस कलवु उचित हॉस्टल वसति कलदु तल्लिकि वंदनम पथकम वर्तिंचुनु कोत्त बस स्टैंड दग्गर ओवर ब्रिज प्रक्कन भीमवरम 1 श्रीनिवास तेन्नेटी करेस्पोंडेंट विरिंची तेन्नेटी डायरेक्टर।